खट दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंथ गुणा, गावे गुण शेष सहस जे बारस, आद अंत लिव लाग तुना। गावे गुण महादेव बैरागी, जिन ध्यान

सात जुग तै माण्यो छल्यो बल बावण पायो त्रेता तै माण्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस किर तारथ कियो उग्र सैन

जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जाने सुख देउ परिखियत गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल सो जस नानक गुरे नित नव तन